0: करूं मार।
1: हाथ में किया
0: तो करूं मार,
1: कहीं किए तो करूं
2: मार।
0: पकड़ूंगा मार, कहीं किए तो करूं मार।